रेडियो दिलबर अब कभी भी कहीं भी सुनिए हमारी वेबसाइट पर लॉग ऑन टू www.radiodilbar.pk।

लेवने नश्वे तो खुमार मस्ती न भेजने मस्ताना नश्वे मस्ताना नश्वे दिलरुबा दिल परस्ती न भेजने अस्सलाम वालेकुम संगमंग चल दे जी सहलात हुआ क्या ठीक ठाक ये खैर खरीय थे यकीन अंतास बे ठीक ठाक ये खैर खरीय सर भैया दिल भर रेडियो आवाज और दो दफा रही जहान मना ना चेता उस चीन कर दे अखबल खुरने जरूरत नहीं दे एफएम स्टेशन एफएम 94 रेडियो दिल भर सो अभी मनना मेहरबान शुक्रिया दशकर बीसीआर चिता सुमा सराई यानी कि ताहिर जमान सर मौजूद ही है ताहिर जमान आवाज और आवाज तर कम कम से कम दिनों और देशी दी बहाले सरा तासु अखबल फीडबैक ओपिनियन अखबल खबर या तरी तक के तौर स्पीन मासरा शेर खोल शेजी नो जनाब कसोक ड्राइविंग खे नो खे दिखाना जमानी कौम खोना खबर ख्याल चिकलम ड्राइविंग को देर पे एहतियात बन को कोशिश कोए चिलग अपल फॉर्म अपल सोच फिकर ड्राइविंग तरफ तक गम दिन बराबर बसाते या नो गर्ल्स एंड गाइस लेडीज एंड जेंटलमैन मौसम सिंह दे जी सब बदरंग मौसम दे जी अलग सब बेखुन दिस गमदन मौसम दे पदी मौसम किस गमदन ना खुराक दिस गमदन ना सजड़ गवाड़े ना जी गमदन नौ चढ़ दिस गमदन बंदा गर्जी दे शी चक्रु तो तली शी नो सब साइड दिस गमदन मौसम सिंह दे सब कोरुन मौसम अलग दिस गमदन सिंह दे गर्म मौसम दे यख मौसम दे तबियत मिजाज सासो खुदे गना खबर सास तबियत खदे आओ कस्तास तबियत ख नहीं गना बस डॉक्टर लोअर शे जे उन्हन सुबह डॉक्टर हम बस ना द ठूल डॉक्टर खबर ना कोम दस दी छे बस सिर्फ गम देन लो बिठो की दिनो अल्लाह खैर वाचे जे नो ग्रानो कदरमंदो और इदुन को ग्रानो फगो और इदुन को जमा उस्तासो दग मलगर्थिया बज कमने तर योलस बजो पूरी बई जे तर योलस बोर ये पूरी कमने चाश लखा तर योलस बोजो पूरी कमने ज बता सर खबर तेरे बखम जी सब जमा दर खबर बई ओस लकच कमने उस्तास दा जड़ खबर भैया द खोग महफल हम दग रंगे रवान दौरान भैया प्रोग्राम के शामिल दो दोपहरा सिफर 9 38 280 495 फदी नंबर था कॉन्टेक्ट कॉलेज फदी नंबर था सो माथा कॉल कॉलेज ठीक था करा सब हो शुए 0938 280 495 फदी नंबर राबिता कॉलेज जी और मैसेज हम तास माथा राले गले छे नंबर तो उस ना मैम सही देखा ना नंबर दस मौजूद है मौजूद है चचास नंबर मौजूद ही ना बया लेकिन गमन दवेना हजत नहीं करा ट्रैक एंजॉय की मां सर पाते शे जी ताहिर जमान सर पाते शे हाँ

0: मिलता है, क्या वो जादूगर है?
1: शायद वो सोना ही सुनती होगी यार, सिर्फ आपसे बात करने के लिए कॉल करती, लेकिन हम शो भी सुनते हैं, लोगों को भी सुनते हैं, सिर्फ आप हो नहीं, आपके पास को सुनना है, लोगों को सुनना
0: है। ये बात बिल्कुल ठीक है, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। जो लोग प्रोग्राम नहीं सुनते वो बैक टू बैक कॉल मिलाते हैं मिलाते हैं मिलाते हैं।
1: भाई आज मुझे प्रोग्राम की बिल्कुल भी समझ नहीं है, आपको सीरियसली बता रही हूँ, आज मुझे प्रोग्राम की बिल्कुल भी समझ नहीं है। मैंने अपनी देखो चर से पहले नया रेडियो भी इस वजह से लिया, क्योंकि मैं फोन पे कॉल भी मिला रही होती, रेडियो भी सुन रही होती, तो इस वजह से थोड़ा मुश्किल था। अब जब मैं कॉल मिला रही हूँ, मैं चाहती हूँ मुझे भी सुने, आपको तो रोज सुनते हैं, मुझे भी सुने।
0: नया रेडियो क्या खर्चे मर्चे हो रहे हैं यार
1: भाई 2000 रूपए खर्च के,
0: 2000 ये तो मेरे वो जुमात वाले चप्पल है, 300 रूपए। शबनम वो प्रोग्राम आपको याद है जो मुझसे चप्पल जो चोरी हुए थे?
1: नहीं भाई वो आप दीर में थे ना, मैंने आज
0: नहीं, दीर में नहीं था वो प्रोग्राम, मैंने रेडियो पाकिस्तान पे किया था, वो चप्पल जो मेरे चोरी हुए।
1: भाई आप मेरी बात तो सुने, आप रेडियो पाकिस्तान पे कौन सा शो करते हैं? पहले कभी चौड़ा कभी स्टार्ट किया, अपनी मर्जी के मालिक होते हैं, रेगुलरली तो आप शो करते ही नहीं।
0: मेरा मूड है,
1: कभी आपने रेगुलर शो किया है?
0: मैं अपने मूड का मालिक हूँ।
1: अपनी मूड के तो आप मालिक है, लेकिन आपको पता है आज मैंने आपके वो दीर वाली रेडियो सुबह सुबह देखी।
0: अच्छा
1: हाँ, के वो छोटे छोटे बच्चे जो आपसे मिलने आए,
0: अपने वीडियोस देखे
1: तो स्कूल के बच्चे। जी जी भाई, परसों मुझे नया मोबाइल मिला, मेरे भाई ने मुझे लेके दिया, तो जैसे ही उसमें सिम डाल दिया तो अल्हम्दुलिल्लाह फ्री डेटा था।
0: इस तरह करते हैं शबनम, इस तरह करते हैं, जितने सवाबी की लिस्ट है या जितने चारसदे की लिस्ट है, आप मेरे वीडियो पे कमेंट्स करें, आप ये लिखें कि चार सद्दा सवाबी, तो मुझे पता चल जाएगा कि सवाबी के लोग मुझे ज्यादा सुनते हैं या चार सद्दा के लोग मुझे ज्यादा सुनते हैं।
1: भाई मैं किसी और की आईडी से कर लूंगी इस तरह।
0: नहीं, वो एक फेक आईडी बनी है, वो सफूरा ने आई थिंक सो बनाई है, सफूरा गोरदी के सदा से वीडियो गाने अपलोड नहीं किया, मेरी रियल अकाउंट जो है वो आप उस पर कमेंट्स करें।
1: नहीं भाई मुझे तो पता है, लेकिन मैंने आपको कहा ना कि अपडेट नंबर भी वो सिम में कहीं इधर उधर हो गया है, तो मैं वो भी वो नंबर मैंने अपने पास किसी बुक पे लिखा था, वो मुझे याद है, वो मैं ले लूंगी।
0: आपने बड़ा टाइम ले लिया है जी, ओके थैंक यू। टाइम हजमा सर खत्म हो यार, उर्दू में खबरें कर करके हम भूल गए हैं कि यार हमारे साथ 2 मिनट टाइम है, लेकिन उसके बला गिली थे यार दस दम टाइम जमा सर खत्म दे। सबाब इंशाल्लाह भैया मुलाकात की, और जुमेरात फोरस में भी जो प्रोग्राम तरह नशम चूंकि ग्रुप के मैसेप्रीम बेगा सदा से डिस्कशन के दू चेर द जुमेरात जुमंगा द जमा कजन सिकमुद आगे द सलविखते का खैरात कही मे भी राम शम अभी भी राम नशम हिस्पतल खुबारल सबाब इंशाल्लाह ताउसर मुलाकात की द खपल जान ख्याल साथी खुबारल जुमंग द सबाबई द हस्पताल हेल्पलाइन नंबर 9 4 बंद को जमा वाज ताहिर जमान मैसेज करे चेरे कंटिन्यूसली तर एक पूरी हो साता स्वाभाविक जमा आवाज हो रही था सुसर्व तरीवी पूरी जमा सुवी चेहलो हाई हुई और 93 हनीफ का जमा आवाज हो रही हनीफ का टाइम पूरे से बेटा था सुचिकम ने लिंक ड्रॉप कही खा बारल सुगरानो यानी द रेडियो अवर्धन को तासु थरदग महाल द पालडोना कॉस्मेटिक पाकिस्तान आवाज हो रही तासु द हैद है मुमन होम्योपैथिक जनरल हस्पताल आवाज हो रही दो FM 94 अवरुदन की जमा आवाज हो रही नुमाल अब डेट रखा हुई चेर जमा आवाज होने दे कट शवे कद 93 आवाज सुगवरी नुमा तो हम अब डेट रखे चेर जमा आवाज 93 बने कट नुमा तो चेर दल प्रोग्राम फॉर्मेट आखा बदल के मजी बारल बिलाल जान तासु सर लाइफ थे लाइफ आओ बराहिरास जी नन 4 काल द सवाबई रागल आओ 3 काल सिकम देगा द 400 रागली वला चे 400 सवाबई दा से लग लग बराबर सुलखा बराबर सुल वही छे मापस अपडेट रागल जमा पर ख्याल से आवाज जमाना एंट्री बांधे कट सुलो 9 4 कॉल से कम दे द टिक्स वाला 9 3 से कम दे 3 कॉल जी द 9 4 से कम दे 4 कॉल सी थैंक यू आसमा थैंक यू मैविश द अपडेट रखोल द पारडी रडे रमन नजम आवाज से कम दे आवाज ओखे दे द सूख दे जम आवाज से कम दे मारिया द खलक से हुई बचे ना हुई मारिया से कम दे बल प्रोग्राम के राजी अल तजकम दे हूर या दा बल्कि बल्ला असल की पदे बाएं तासु रज खबर को बीजे लान दे कट शो FM 93 किस्मा आवाज तासु डीलिंग कवल ग्वाली तासु डीलिंग की बारल जो पेलाल जान द FM 93 या FM 94 ना तासु सरा लाइफ आओ बराहे रासु मजी बारल लिख शांत म्यूजिक को दिन बस राजम 9 4 वन प्रोग्राम से कम देगा कंटिन्यूसली को मजी

0: रेडियो दिलबर अब कभी भी कहीं भी सुनिए हमारी वेबसाइट पर लॉग ऑन टू www.radiodilbar.pk।
1: आप सुन रहे हैं FM 94 रेडियो दिलबर सवाबी।
2: ये रेडियो दिलबर सवाबी है और आप रेडियो दिलबर FM 94 सवाबी से इस्लामी नशरियात सुन रहे हैं।

0: आप सुन रहे हैं दिलबर एफएम 94 स्वाबी से इस्लामिक ट्रांसमिशन। आप सुन रहे हैं दिलबर एफएम 94 स्वाबी से इस्लामिक ट्रांसमिशन। रूहानी सुकून की रोशनी और दिल को छू लेने वाले लम्हे।
1: या हबीबी या मुहम्मद या नबी।
0: कुरान, सुन्नत, अखलाकी सबक और रूहानी गुफ्तगू, ये सब सिर्फ एक जगह, दिलबर एफएम 94 स्वाबी।

आप सुन रहे हैं दिलबर FM सवाबी से इस्लामिक ट्रांसमिशन, कुरान की तिलावत, सुन्नत भरी बातें और दिल को सुकून देने वाले लम्हे। यहाँ हर लफ्ज में ईमान की रोशनी है। दिलबर FM 94 सवाबी। दिलबर FM 94।

पलंबो गुलाबा दो बन सीजे पलंबो गुलाबा जबदिश पौरज इंतजार कौमा जबदिश पौरज इंतजार कौमा

तापसी जाना नटू लशपाओ मले वाला तो खबर निश्वले बेगाजमाद हाला स्तरग पटकड़े खुमिन दास्ता दख्याला माद स्रोलम वो

0: back right after the commercial break.
1: जिंदगी एक खूबसूरत सफर है। जब इंसान तंदुरुस्त हो तो हर दिन नया लगता है, हर सांस ताजगी भरी महसूस होती है। लेकिन जब बीमारी जिस्म पर दस्तक दे तो मुस्कुराहटों के रंग भी मद्धम हो जाते हैं। ऐसे वक्त में जरूरत होती है एक ऐसे मरकज़े शिफा की, जहां दवा के साथ साथ दुआ का यकीन भी शामिल हो। और अब वही यकीन, वही उम्मीद आपके अपने शहर सवाबी में, जहांगीरा रोड शाह मंसूर बाबा मदरसा के करीब शाह मंसूर में मौजूद है। हैदर मोमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी। ये सिर्फ एक अस्पताल नहीं बल्कि इत्मीनान, भरोसे और शिफा की वो जगह है, जहां मरीज को फाइल नहीं एक इंसान समझा जाता है, जहां इलाज सिर्फ बीमारी का नहीं बल्कि इंसान के एहसासात का भी होता है। जेरे निगरानी डॉक्टर हैदर अली मोहम्मद, जो अपने तजर्बे, इल्म और खुलूस से हर मरीज के लिए शिफा का जरिया बने हुए हैं। उनके साथ मौजूद हैं हाई काबिल और महारत याफ्ता डॉक्टर्स की टीम, जो हर मरीज के इलाज को एक फर्ज, एक खिदमत और एक मिशन समझती है। चाहे मसला शुगर का हो या ब्लड प्रेशर का, मैदे के मसाइल हो या जोड़ों का दर्द, दमा, एलर्जी या सांस की दुश्वारी हो, खवातीन के अमराज या आसाबी थकन, हर बीमारी का कुदरती, महफूज और देरपा इलाज सिर्फ हैदर मोमिन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी में। यहाँ ना खतरनाक दवाएं, ना साइड इफेक्ट, बस खालिस होम्योपैथिक इलाज जो जिस्म के साथ दिल को भी सुकून देता है, क्योंकि यहाँ यकीन है कि शिफा दवा से नहीं दुआ से भी मिलती है। अपना अपॉइंटमेंट हासिल करने के लिए या बराह रास्त डॉक्टर हैदर अली मोहम्मद से राब्ता करने के लिए अभी कॉल करें 0331-939-4941। आपकी सेहत हमारा अज़्म, आपका एतमाद हमारी पहचान। हैदर मोमिन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी। कुदरती शिफा, दिल से दुआ। कुदरती शिफा, दिल से दुआ। हैदर मोमिन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर
2: सवाबी। ज्वानी द ज्वानको न बगैर निमगिड़ी वो कुचर त दग ज्वानको प वक्त बानी गम उनक रारवान वक्त की दग ज्वानकी स्तासु द खाइस द खराबे दो बाइस जुड़ दी शी द ऑयली स्किन मातु द पारा जमुग दगा वेबसाइट विजिट की www.belladonna.com.pk

फेराडाइज मार्केट फकीर गली किस्म का प्रोडक्ट मिला भी देख रहा काशिपा कॉस्मेटिक्स वाला फकीर गली वाला किस्म का वासूरी देख रहा अलत चिकम ने पैराडाइज मार्केट की फकीर गली किस्म का प्रोडक्ट था काशिप कॉस्मेटिक्स वाला मिलावेगी हमजा कॉस्मेटिक्स चूली बाला स्टाफ अश्वा बाबा रोड माने जमंगा तमाम से तमाम प्रोडक्ट हमजा खान से मिलावेगी देख रहा सादत मामा होटल लो सादत मामा फॉर्म डेरे स्टाफ जिकम ने व्हाट्सअप रोड माने सादत मामा डेर खुले सड़े दे वक्त दिशा ने वीडियो करी वा और वो चिस्ता वाला प्रोडक्ट जिकम ने निशानी वा रखा।

0: back right after the commercial break.
1: जिंदगी एक खूबसूरत सफर है। जब इंसान तंदुरुस्त हो तो हर दिन नया लगता है, हर सांस ताजगी भरी महसूस होती है। लेकिन जब बीमारी जिस्म पर दस्तक दे तो मुस्कुराहटों के रंग भी मद्धम हो जाते हैं। ऐसे वक्त में जरूरत होती है एक ऐसे मरकज़े शिफा की, जहां दवा के साथ साथ दुआ का यकीन भी शामिल हो। और अब वही यकीन, वही उम्मीद आपके अपने शहर सवाबी में, जहांगीरा रोड शाह मंसूर बाबा मदरसा के करीब शाह मंसूर में मौजूद है। हैदर मोमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी। ये सिर्फ एक अस्पताल नहीं, बल्कि इत्मीनान, भरोसे और शिफा की वो जगह है, जहां मरीज को फाइल नहीं एक इंसान समझा जाता है, जहां इलाज सिर्फ बीमारी का नहीं बल्कि इंसान के एहसासात का भी होता है। ज़ेरे निगरानी डॉक्टर हैदर अली मोहम्मद, जो अपने तजर्बे, इल्म और खुलूस से हर मरीज के लिए शिफा का जरिया बने हुए हैं। उनके साथ मौजूद हैं हाई काबिल और महारत याफ्ता डॉक्टर्स की टीम, जो हर मरीज के इलाज को एक फर्ज, एक खिदमत और एक मिशन समझती है। चाहे मसला शुगर का हो या ब्लड प्रेशर का, मैदे के मसाइल हो या जोड़ों का दर्द, दमा, एलर्जी या सांस की दुश्वारी हो, खवातीन के अमराज या आसाबी थकन, हर बीमारी का कुदरती, महफूज और देरपा इलाज सिर्फ हैदर मोमिन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी में। यहाँ ना खतरनाक दवाएं, ना साइड इफेक्ट, बस खालिस होम्योपैथिक इलाज, जो जिस्म के साथ दिल को भी सुकून देता है, क्योंकि यहाँ यकीन है कि शिफा दवा से नहीं दुआ से भी मिलती है। अपना अपॉइंटमेंट हासिल करने के लिए या बराहे रास्त डॉक्टर हैदर अली मोहम्मद से राब्ता करने के लिए अभी कॉल करें 0331-939-4941। आपकी सेहत हमारा अज़्म, आपका एतमाद हमारी पहचान। हैदर मोमिन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी। कुदरती शिफा, दिल से दुआ। कुदरती शिफा, दिल से दुआ। हैदर मोमिन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर।
2: तेरी रूह को तस्कीन मिलेगी, तू दर्द के लम्हात में कुरान।
3: मदरसा दारुल कुरान व सुन्ना लिल बनैन वल बनात, मोहल्ला तौहीदाबाद, गांव स्पिनकाणी, नजदीक जामे मस्जिद तौहीद।
4: जमुन पर मदरसा के सहर दशपगु बजो नवाखला तर गर्मी दुलस बजो पूरे, द जनानो तालीम और हमदगशान द द्रु बजो नवाखला तर माखाम पूरे, नारिनो तालीम कुदलिशी चिपाहे की कायदा, तर्जुमे कुरान, नाजिर कुरान, हिफ्ज़ुल कुरान और द दर्जी उलाना द दौरे हदीस पूरी किताबुना कुदलिशी। ज़ेरे निगरानी मोहतमिम मौलाना मुफ्ती मोहम्मद नाहिद सैब और नाजिम साबिर हनफी सैब। कॉन्टेक्ट नंबर तौसीफ अहमद खाकसार 0315-6386-080। मुफ्ती मोहम्मद नाहिद सैब कॉन्टेक्ट नंबर 0314-06-93-596। नुहुम उस राशे वल औलाद ना दा दुनिया हम खेस तकड़े और आखिरते हम खेस तकड़े, मुंसरा दाखिली शुरू दी।

रेडियो दिलबर अब कभी भी कहीं भी सुनिए हमारी वेबसाइट पर लॉग ऑन टू www.radio